0: Lazegla, Motune, Tari, Tadishi, and Tung, what another show yin?
1: Lazegla. Tine, dear Segla, somebody can answer Tanda, D. Malan, and Lolly, and Tishurigla, Mejachi,
0: Lazegla,
1: Gagashun, Hohase,
0: Lazelis,
1: and DG, Zeti, Zobin, and Yantishi, can answer Tishal, Tapisan, Chitan, and Manchester, and answer Chili, Chi, Nane, Juberulia, and the D. Gorge, Tigrigla,
0: Lazet,
1: Chenan, Chichu. ने चोंगे परुई ने चिक मिशो थंडा कोई थंडा ताक्योंग लोटीज में भें दिन अलोन यान चिंगा स्टीयरे मंचा चिंगा ले दी चोटो उम लोगी
0: ना
1: ना जितने चिचु यान यू चान चुने चोंगे परुई लग ना चु थंडा क्या के शुम ना होहा साई वो दी यान जी जेबु दोगी ना दीजी जेब ने यान नुम जुदा दीसी ता दी केजो चो दी दीर शा ना चु थंडा जिक समुदान दो जाने में चा शुरू जाने यान को मैं बाया जी वो जी समुद्र शुरू दो
0: ला
1: ti meba chigo marigla
0: lese
1: ko nganjoy tanda mojek chik ta mala leg chebe chugo ko pe tu slo chik ta me shushu ba di gore
0: ah
1: ne lese ne che ode yang ke chen bu jirisha
0: lese le
1: chen den ji da ti sing ta di na lo le ta ji na su chugo mala su su yang ji tin je ta di ka sum yori la
0: lese
1: ring dong
0: Lesse. Malaki carried the Kunzilushin Segura, the Taganashi Trunumge, Zata, the Zuzak captured the Sangma, Jacob with Seshi Lumbe, Maladin, Yoshet, the Tiati, Kachin Boris, what?
1: Not a
0: less, let's say. No.
1: No. Tiny, dear Shakilanzo, Tandaji, Tap, Machadi, Jebe Borulia, Tai, Pesachan Yanji, Kun Tamote, Anjik, and the Chilidi. Teach you, John Slayna, in Jim Mau Gorge, then, the meek toy in Gurchy.
0: Ah, less
1: a deed said the cup the jardini,